कोड राजा कोड प्रजा कोड सब संसार कोड मंडप कोड माड़ी कोड बेसनहा कोड सोयना कोड रूपा कोड पेननहा कोड काया कोड कपड़ कोड रूपे अप्पा कोड मिया कोड बीबी खा पोए खा कोड कुड़े नुहन लगा बिसरिया करता किस नाल की चाहे दोस्ती सब जग चलनहार।

दुख दारू सुख रोग पया जा सकता न हो, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलेहारी कुदरत बसया तेरा अंत ना जाय लख्या रहो, जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर है। तू सच्चा साहिब से तस्वाल्यो जिनकी तीसो पार पया, कहो नानक करते किया बात जो किश

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं पराकृत है सर्व शब्दं।

पहला नानक में शरीर का एक रथिकृतवा हो जुग जुग फिर बटाई है ज्ञानी बुझेता है सतयुग रसन तो का तर्म ग्रथवा हो तृतीय रथ जत का जोर ग्रथवा हो द्वापर तप का सत ग्रथवा हो।

चार वेद सचियार पढ़े गुणितन चार विचार आओ भगत बिन सदाए आओ नानक मोखम तर पाए पड़ स्तर।

0: जितक होवे जुर महला पहला।
1: नाय मनिए पते उपजे सलाहे सच सु दरगे अंदर पाए तगना।

तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा तुम साहिब गुणी निधाना तुमरी महिमा वर्ण ना साको तू ठाकुर ऊच भगवाना मैं

हम अंधले अंध बिखर बिखराते, क्यों चल हैं गुर चाली। सतगुर दया करे सुख दाता, हम लावे आपन बाली। ज्ञान त्यान किछ कर्म न जान, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लावो, बिखम नदी जाहि तरनी। अंतर जामी पुरख बिदाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। तुदया गय अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा। कहो नानक।

0: प्रभु नानक दे कर हाथ परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार अज दे अमृतमई बचना दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवन कीता। पवित्र बाणी अज दे शब्द दी विचार दे नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। गुरु पातशाह जी अज दे शब्द दे राही मनुखी दुनियावी जीवां नूं जो समझाउणा चाहुंदे हन एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ

आप जी रोजाना इस अस्थान तों अमृतमई बाणी दी लड़ीवार शब्द विचार दा लाहा प्राप्त करदे आ रहे हो। पंचम पातशाह शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन दे महाराज सतगुरु जी वल्लों देव गंधारी राग दे विच जो पावन शब्द उचारण किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 535 दे उपर सुभायमान है। शब्द की आरंभता वाली पंक्ति, रहाओ वाली पंक्ति जो शब्द का केंद्रीय भाव है, सतगुरु महाराज जी सानू तुहानू सबना नू मन दे तल ते समझाउण दा यतन कर रहे ने। अपने अपने मन नू आखो भी मना साकत दा संग छड़ दे, मन मुखां दा संग छड़ दे, क्योंकि मन मुख दा संग साकत दा संग तैनू डोब देगा। जे तू इस भव सागर तो तरना चाहुंदा है फिर तरन वालियां दी संगत कर, डुबन वालियां दी नहीं, क्योंकि जिहड़ा आप डुब रहा उहदा संग करन वाला भी डुब जाएगा, तरेगा नहीं। ते जिहड़ा तर रहा है, तैरना जानदा है, पार लंघना जानदा है, उहदा संग करन वाला भी संग करके तर जाएगा। जे असीं लोहे दा संग करांगे ते डुब जांगे,

0: करियो मेरा मूड़ साध पगा हेठ रुलसी रे।
1: जदों ये गल समझ दे विच आ गई, अरदास ते ताई होएगी ना बेनती, जे मैनू समझ आ गई। जे मैनू समझ नहीं आई ते मैं अरदास की करा, ते मैनू समझ नहीं आई मैं बेनती की करा। पहले समझ आनी जरूरी है, पहले ज्ञान होना जरूरी है। जिन्ना चिर तुसी जड़ी संगत कर रहे हो तुहानू पता ही नहीं वह संगत माड़ी है कि चंगी है, फिर तुसी उहदे चों किवें निकलोगे। पहले उहदा ज्ञान उहदी सोझी होनी बहुत जरूरी है, फिर असी बेनती करांगे भी महाराज जिहड़ी संगत दे विच मैं पै चुका मेरे वल्लों निकलना बड़ा औखा है, पर तुसी कृपा करो बाहां पकड़ गुर काढ़िया सोई उतरिया पार। ते गुरु महाराज तुसी बाहां पकड़ के मैनू माड़ी संगत चो कढ लो। बहुत समा पहला एक सांझ पाई सी, एक नौजवान माड़ी संगत दे विच पै के रोज नशे दे तीन टीके अपने लाओ। वो अपने मूहों कहिंदा है वो नौजवान भी नशे दे तीन टीके रोज मैं अपने लगाउंदा, क्योंकि संगत ही उदां दी मिल गई नशे करन वालियां दी। कहिंदे ने तीन वार मैं होस्पिटल भी दाखल हो चुका, घरदियां दी हालत भी माड़ी हो चुकी है, मेरा इलाज कराउंदे कराउंदे पूरा परिवार रोज रोंदा है, पर मैनू समझ नहीं सी आउंदी। एक दिन कहिंदे घर अज जदों कोरोना दा समा आया सी ना घर दे विच, उदों बड़ियां दी जिंदगी बदली है। ठीक है ये एक समा ऐसा आया सी कोरोना, पर घर दे विच जिहड़े बैठे हां आपां उदों बड़ियां दी जिंदगी दे विच बदलाव आया सी। जिहड़े कदे बाणी पाठ नहीं सी करदे अज ओह पाठ करन लग पए, जिहड़े सिमरन नहीं सी करदे ओह सिमरन करन लग पए। बहुत कुछ पता लगा उस समय दे दौरान। ते कहिंदे ने जदों बैठ के किते टैलीविजन दे सामने ओह कथा विचार चलदी सी, ओह ऐसी विचार चली कि ओहदे मन नूं जाके तीर वज गया। एक जदों ओहदे मन नूं आके तीर वजिया ना अणियाला तीर, हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजे, ओह ऐसा मन नूं तीर वजा अणियाला, ओहदा मुख ही मुड़ गया नशे वाले पासे, ओहदी संगत वालों ही मूंह मुड़ गया। अज होर कल होर परसों होर करदे करदे एक ते नशे तो छुटकारा हो गया, और दूजा उन्हें आने वाले समय दे विच कहिंदे खंडे दी पौल भी लै लई। ते अज पता की करदा है, अज वह जिहड़ा ये समागम करवा के ते नौजवानां नूं प्रेरदा है कि तुसी नशे ना करिया करो। पहले उन्हूं समझाउंदे सी वी नशा ना करिया कर, अज वह दूजियां नूं समझाउंदा पिया कि नशे ना करिया करो, ये बड़े माड़े हुंदे ने, घर उजड़ जांदा है, घर बर्बाद हुंदा है, जिंदगी खोखली हो जांदी है। अज वह दूजियां नूं समझा रहा है, आ गया ना मोड़ा, बदल गया ना जीवन, हुण उह माड़ियां दी संगत विच उठदा बैठदा नहीं है। क्यों? क्योंकि गुर मिल गया, गुरबाणी दे राही ओ चोट अंदर लग गई। बाणी गुरु गुरु है, बाणी विच बाणी अमृत सारे, ये हकीकत है। उस नौजवान दा ये हकीकत जीवन बयान करदा है कि अज ओह दूजियां नूं कहिंदा वी भाई चंगियां दा संग करो माड़ियां दा ना करो, क्योंकि गुरु मिल पिया उहनूं। जिस गुर मिल छुटकी त्रिकुटी रहे, वो त्रिकुटी कदों छुटी जदों तीर वजा अणियाला जाके मन नूं। फिर बेनती कीती कि वाहिगुरु पातशाह मैं हुण एक दान एक बख्शिश एक खैर तेरे तो मंगदा, मेरी झोली दे विच एक खैर पा दे। जो जीवन विगड़ना सी विगड़ गया, उहनूं हुण दुबारा ते नहीं सवारिया जा सकदा, पर जिहड़ा अगे समा है वह तो सवार लवां, जिहड़ा बीत गया वह तो मुड़ के वापस नहीं आना, वह मुड़ के वापस जीवन नहीं मिलना। पर जिहड़ा समा बचिया है कम से कम वह तो मैं माड़ी संगत तो बच के ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਤਰ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ

हे वाहिगुरु जी, जे तुसी मैनू मेरी त्रिकुटी अंदरों दी इहदे तो छुटकारा दवा दिता, हुण मैं एक खैर मंगदा नित उठ के। इस सवेरे उठ के रोज खैर मंगनी है, रोज मांगो दान किरपाल किरपा निद। हे किरपा दे सागर, किरपा दे खजाने, किरपा दे मालिक, मेरे ते भी अपने इस किरपा दे खजाने विचों एक किरपा मेरे ते भी कर दे। केड़ी मैं इको ही खैर मंगदा, मेरा मुख साकत संग ना जुट सी रे। मेरा कदे भी मुख साकत दे नाल ना जुड़े, कदे भी मेरा आमो सामना साकत नाल ना होवे, मेरी बोल चाल ही ना होवे। मुख मतलब मेरी बोल चाल साकत नाल होवे ही ना, कदे भी ओदा संग ना मैनू। ये ता होएगा जे तुसी कृपा करोगे, ता मेरे कदे भी मेरा मूह ना ओदे नाल जुड़े साकत नाल, क्यों मतलब भी मेरी ओदे नाल गलबात ही ना होवे। मूह जोड़न का मतलब हुंदा गलबात करनी। मैं चाहना भी साकत दा संग मैनू कदे भी ना मिले, ना कदे ओदे नाल मेरी गलबात होवे। बस ए दान मैं तुहाडे कोलो नित मंगदा। हुण आपां दूजे दुनियावी मायावी पदार्थां दे दान मंगी जा रहे, ये दान दसो कौन मंगदा सवेरे उठ के भी सारा दिन मैनू मनमुख दा संग ना मिले, मैनू कदे साकत दा संग ना मिले। मैनू जे संग मिले ते सही गुरमुख प्यारे मेल, जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित ए अमृत वेले उठदियां। ये बेनती करनी है ये महाराज, सारा दिन जे मेल होवे ते गुरमुखा नाल होवे, मनमुखा नाल मेल ना होवे। से संयोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। मैनू सारा दिन ओ मेल करायो जिनू मिल के मेरे मुख चो वाहिगुरु निकले। ओ मेल ना करायो जिनू मिल के मेरे मूहो गाल भैड़ी बोल गंदले बोल ही निकलन। मैनू एहो जा संग नहीं चाहिदा। मैनू संग चाहिदा जिनू मिल के मेरे मुख तो वाहिगुरु निकले, ते जां फिर सरबत दे भले दी गल निकले। से संयोग करो मेरे प्यारे, मैं आ दान आ खैर वाहिगुरु जी तुहाडे कोलो मंगदा। ये रोज उठ के असी दिन चढ़न तो पहला अरदास करनी, ताकि सारा दिन कोई एहो जा संग ना सानू मिले। सतगुरु महाराज जी कहिंदे जिन्हों समझ आ गई वो फिर अरदास करदा है।

ना जुड़े साकत नाल मेरा मुंह जन नानक दास दास को करियो ये जन बन के नानक गुरु अर्जन देव महाराज जी कह रहे ने ये जन बन के मैं ये अरदास करदा मैनू अपने दासरियां दे दासरियां दा दास बना लो मैं तुहाडे दासरियां दा दास बनना चाहना ते मैं ये भी चाहता मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे मैं साकत दी संगत करके नहीं रुलना चाहता मैं चाहना कि मेरा सिर गुरमुखां दे पैरां हेठ भावे रुल जाए पर मैं साकत दा संग करके रुलना नहीं चाहता। देखो उत्थे भी रुलना इत्थे भी रुलना जे साकत दा संग करके रुल गया फिर लोक गयो पर लोक गवायो ते जे मैं साध पगां हेठ रुल

तारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूकने रे, कोई न जाने तुमरा अंत, चेते उचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूत्र तारी, तुम ते हो।

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वाह, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास ही सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याई। जिस डिठै सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरै घर नाउन दे आवे ताए। सब थाई हुए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियां जी दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई ते गवाई, देख के अणजट कीता तिन्हां प्यारियां। सचियारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते, बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े। तन आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई, कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया। सिखी केसां स्वासां नाल निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावे, चेतावन का सदका सर्व सुख होए। जहाँ जहाँ खालसा साहिब तां तां रछे आ रियायत। देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। सिखा नू सिखी दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सिदान, नाम दान। श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौंकियां झंडे बूंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। सिखा दा माननी मां, मत उची मत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा साई दा तार जीओ श्री ननकाणा साहिब। ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान। खालसा जी नूं बख्शो नमाणियां दे माण सतगुरु, ने ताणियां दे ताण, न्योटियां दी ओट सच्चे पिता। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज। आप जी दे हजूर शब्द कीर्तन छे पौड़ियां, आनंद साहिब जी दे पाठ जी की अरदास है जी। बाणी पढ़दियां सेवा संभाल करदियां, एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां गलतियां हो जांदियां ने। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी, अगां तों समत बख्शनी, दारे आई हुई संगत दी हाजरी दर प्रवान करनी। तिल फुल भेटावां दर मंजूर करनियां, यात्रावां सफल करनियां जी। सतगुरु जी आप जी दे हजूर पंचम कड़ा प्रसाद दी देख सज के हाजिर है, दर प्रवान होवे प्रवान होया। प्रसाद संगत विच वरते जो जीव छके, आप जी दा पवित्र नाम सतनाम वाहिगुरु नाम जपे जी। आप जी करो कृपा, अमृतमई बाणी विचों पावन हुकम बख्शो, हुकम अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था सूझ बख्शनी। सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवै, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा गया पई अकाल की तबै चलायो, सब सिखन को

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵਲ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤਿ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਦਵੈਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉਂ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਬਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮ ਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇਂ ਬਾਇਸ ਨਾਤ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਿਆ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣ ਸਿਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਅਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵੱਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤੋਂ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਉ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਤਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬੈਂਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਧਰਿਆ ਸਿਰਸੇ ਰਿਜਕ ਸਵਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੌਂਸਾ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਬਚਰੇ ਛਰਿਆ
तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन में सिमरन करया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परव्रया सब निधान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना परव्रया राग अस महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्या वहें तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घड़ घड़ अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समान इक दाते इक पेखारी जी सब तेरे चोज बढ़ाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हां तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेव हैं जो सेव हैं तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर ते आवहें हर ते आवहें तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैनो हर ते आया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ ते आया जी तिन का पौ सब गवासी जिन से बया जिन से बया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहण तुद जी हर अनिके अनेक अनंता तेरी अनिक करें हर पूजा जी तब दापहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहुसिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुद आपे भावे सोई वरत है जी तू आपे करें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देहें सोई हो पाई रहा सब तेरी
तू सब नित आया, जिस नौ कृपा करें तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुग बाया, तुदे आप विछोड़या आप मिलाया, तू दरिया हो सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहीं, जी जंत सब तेरा खेल, वियोग इल विछड़या संजोगी मेल, जिसना तू जाना है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिंदु जा अवर ना कोए, तू कर कर विखे हैं जान हैं सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला तित सरवरड़े, पैरे निवासा पाणी पावक तिन्हे किया, पंकजो मोह पग नहीं चले, हम देखा तह डूबियले, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसर तेरे गुण गलया रहो, ना हो जती सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिनकी शरना, जेरा तू नाही विसरिया, आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे होरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तिर किते ना काम, मिल साध संगत भाजे केवल नाम, श्रंजाम लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहो, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करम्मा, शरण परे की रखो हो शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चाओ पाई, अमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरण मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबै तुम काबो हो, आप हाथ दे मुहे बचावो हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संगरिए, पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ते आऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मार तारी है, चुन चुन शतर हमारे मारी है, आभाद मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करी हो रक्षा, राख लियो महे रखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे,
दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपथरा, काल पाए शिव जो अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव कन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन्ने, कड़ कड़ के पढ़ पढ़ की जन्ने। जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा तरत ता देहे अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दहे धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनीन अनाद असंभ। ताका मोड़ उचारत पेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताको कर पाहण अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदाशिव, ड्रंकार का चीनत न भव। आप अपनी बुध है जेती, भरणत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, कि विद सजा प्रथम संसारा। इक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा। अंडज रसे तज कीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवे बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंपव, आ जुगा स्रूप स्वयंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे अवार असिख संघर। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच्छ करो रण गाता। जे अस्तु जे तव शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख तुहाँ मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सवटारे। जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट न है। रक्षा होए ताहि सब कल्ला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरे हो, ताकि ताप तन कमय हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट सहाशवय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांसती

खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सर्व ठोर मो हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई, खड़ग के मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे ले हो ओवारी, सरठ मोहो सहाई, दुष्ट दोखते ले हो बचाई, सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे, तबते को अख्तर नहीं आने हो, राम रहीम प्राण कुरान, अनेक कहे मत एक नाम मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुभेद कहें, हम एक ना जान्यों।

दोहरा सगल दोहार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा सगल दोहार को छाड़ के गए हो तोहारो द्वार बहिंगे की लाज अस गोविंदास तोहा। रामकली महला तीजा अनंत इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइया शब्द तंगाब हरी केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या ना ही घर दे रै घर ता तेरा सब किच है जिस दे हैं सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जेनो भुखा सब गवाइया करशां सुख मन आए बसिया जेनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो जिस दियां एहे वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशव तिथ घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर तारिया पंच दो तुद बस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कहे नानक तैं सुख होआ तित कर अन्न हद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा भर उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाज अनहद तुरे।
मुंदामणी महला पंजवां। थाल विच तिन वस्तु पइयो सत्य संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पंचे तिसका होए उधारो एह वस्त जी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसर। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस बायोई तरस बया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरिया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे हरे वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

दसव पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी सब ता होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीयां दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी।

0: अतुल ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गज बज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा। शेखा शेखा चौ चकिया चौ वाया, चौ चकिया बाल पग, पता है इस तो उसका तानू कह रहा। ये तो कौन दी? तीसरे पातशाह है शेखा। चौ चकिया चौ वाया ए मन इकत कर आण। शेख नू कहिंदे महाराज पातशाह, वह कहिंदा मन नहीं टिकदा। कहिंदा जिहड़ा चौं चक्कां विच भज्जा फिरदा ना 24 घंटे, इस मन नू इकत कर आण इत्थे लिया। एहड़ ते हड़ छड तों पता लगा, एहड़ ते हड़ छड तों इधर उधर भजना किनू कह रहे मन नू? एहड़ ते हड़ छड तों इधर उधर भजना छड़ दे की करा? गुर का शब्द पछाण, गुर का वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु।
1: दगड़ियों

आपका सतनाम श्री यह पिछे जो सुनया कि कुछ कहती मैं आकाश छाए उड गई मैं उधर चले गई मैं उधर चले गई सुनया सी यूट्यूब ते नहीं वो कंडी जिन्ने ब्रह्मांड में उत्ते घुमाई हाँ मोगे वाले जड़े प्रभ मिले का चाव उन्होंने उपज सी वो बची अख वाहेगुरु मेरा गुरु तो कहिंदा ये हड़ ते हड़ छड़ तू इधर उधर जाना ते केवल गुर का शब्द पछाण गुरदे शब्द नू पछाण के उहदे विच अपनी सुरत नू लै जा वाहेगुरु।

तगड़े हो तगड़े हो तगड़े, इतना नहीं योर रहो। हाँ, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह, शब्द पूरा गुरु कहो अमृत वर्षा लग पूगा। गुरु गुरु पूरा गुरु, गुरु।

तगड़े हो तगड़े हो। अको सतनाम श्री वाहेगुरु। एक मिनट लूंगा, पिछली बार तो पिछली बार आया तो मैनू लोगों ने दसाया भी इतने एक बीबी राणी मिलने लिए लैणा लगदियां लैणा, मैनू नहीं सी पता। मेरे कलेजे चुरा बजा, मैं इतने मत्था टेक के गया सा, एक सेवादार ते दो प्राणी उत्थे बैठे। आखो वाहेगुरु। कलेजे च छुरा वजा, हे मेरा सतगुरा तू ते आख्या सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो ये प्रगट गुरां की। ते साहब जी जिहड़ा साडा गुरु बनी, माता भी साडा माता साहब कौर आ, असी माता शब्द किसी नूं नहीं कह सकते साहब कौर तो बिना। इन्हां ने पहलों माता कौलां कहा, फिर कन्न फड़ाए दिली सुगर और प्रबंधक बेटी, फिर बीबी कीता। जानते ही आप जिन्हों पहलों की सी माता कौला, जो दिल्ली कमेटी ने दावा किया तो उस वेले हथा कन्ना हथ ला के आख्या नहीं अही माता नहीं कहिंदे, क्योंकि माता तो एको ही आ, माता साहब कौर। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह ने माता जीत कौर नूं माता नहीं आख्या, सुंदर कौर नूं माता नहीं आख्या, साहब कौर नूं आप माता आख्या। पंथ दी मां है तू। जदों सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते, सरसा नदी दे कंढे दे उत्ते आण के परिवार बिछड़ गया ना, आखो वाहेगुरु। ते परिवार बिछड़न तो बाद मेरे सतगुरु ने माता साहब कौर नूं मर्दां वाले कपड़े पाते। उच्ची बोलो समझते हो, ये गल बड़ी कीमती है, ये इतिहास हो सकता किसी नूं टाइम ही नहीं हैगा। सरसा नदी के कंढे ते माता साहब कौर नूं मर्दां वाले कपड़े बनाते, सिर ते दमाला सजाता, आखो वाहेगुरु। शस्त्र पाते, हाथ च बरछा फड़ाता, नाल भाई मनी सिंह साहब हाथ जोड़ के माता साहब कौर ने पूछा, सतगुरु ये मर्दां वाले कपड़े पवाते जो हो सकता इतना लगता जो कोई ताडा ते मेरा विछोड़ा पै जाना, मर्दां वाले कपड़े पवा के इतना मैनू लगता भी तुहाडे ते मेरे हुण विछोड़े पै जाने। ते मेरे साहब ने कहा जे पंथ की मां खोना ही ना, आखो वाहेगुरु। पंथ की विछोड़े सहने पैने, तुसी दिल्ली जाओ। आने वाला समा जिहड़ा बड़ा भयानक आ, असी सारे दे सारे शहीद हो जाइए ना, ते मां माता तू पंथ दी रहनमाई करी, अगवाई करी पंथ दी, वो मां ही साड़ी 96 करोड़ पुत दी मां। सीधा होके बह भी रेलो वाले तुहाडे पिछे लग गए, तू पंथ दी रहनमाई करनी, अगवाई करनी पंथ दी। इत्थे तीन तीन पैसे दियां माइयां जिहड़ियां विचारियां ओह जिहां जिस तरह दे अही लोक उस तरह दे ओह लोक आ, उत्थे लैणा लगी जांदी मत्था टेकणा। ओह लुधियाणे वाले ओह मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, एक बार दसो तुसी औलाद गुरु गोबिंद सिंह साहब दी हो, बोलो नहीं बहुत ढिले बोले, औलाद गुरु गोबिंद सिंह साहब दी हो कि नहीं? तो फिर मां तो इको ही आ साहब कौर, माता तो साहब कौर ही आ। ये थां थां ते तीन तीन पैसे दियां बीबियां राणियां सत्कारयोग ने सारिया ही, आखो वाहगुरु। मगर माता शब्द ना क्यों, जां अपनी मां नूं माता क्यों, जां माता साहब कौर नूं माता क्यों, आ शब्द दी हुण व्याख्या करिए, आखो वाहगुरु। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहिंदे मेरा प्यो आ ना जिहड़ा आदि तो अंत आ, आदि ते अनंत, आद अंत तक रहन वाला, आद अंत के अवतारा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाह। ओ एहो ही आ जिथे चौर हो रहा, ऐसे गुरु दे लड़ ला गया जिन्हां ने कदी

बारकत तुमरी कृपा में कोई न जाने ऊंचे ते ऊंच सगल समग्री तुमरे तुम ते हो सो तुमरी गत मित नानक दास बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की बात सही दस।

पवित्र हजूरी अंदर पंचम कड़ा प्रसाद जी देख सज के हाजिर है दर प्रवान होवे। प्रवान होया प्रसाद समूह साध संगत विच वरतौन दी आग्या बख्शो। जो जी सके आप जिया दा पवित्र नाम सतनाम श्री वाहिगुरु जपे। आप जी करो कृपा अपनी अमृतमई बाणी विचों पावन पवित्र हुक्म दी दात बख्शो। हुक्म अनुसार जीवन ज्यों दी समर्था बख्शो। अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी। सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहे बंद होवन। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा पला। दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभु को मिल वोच है। राज करेगा खालसा खुआर हुए सम लेंगे। खुआर हुए सम लेंगे बोले सोनिहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभाली आनंद देखेगा, देवनहार तेरे दान कीमत न पवै तिस ताते कवन सुमार। संगत साह

गुरसाखी जोत प्रगट होए, जोत स्पावे सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभित मनो, अनदिनो मोहि आई प्यासा। कृपा जल दे नानक सारं को होइ जाति तेरे नाइ वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया।

कौन गर्भ ना आयो। काल समुद्र पैरू प्रगट हर नाम उदाहरण, बसह संत जिस हृदय दुख दारिद्र निवारण। निर्मल भेख अपार तास बिन अवर न कोई, मन बच जिन जानियो भयो तह संसार सोई।

सगल कट रहो व्यापे, व्यापत देखिए जगत, जाने कौन तेरी गत। सर्व की रखिया करे आपे हर पत, अब न

जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना हाके बल बल बल बल सद बलिहार अमृत परवासर अतुल पंडार पर परे ही तै परे अपर अपार पर आप

0: आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट पराछत जाए नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना। हां कै बल बल बल बल सद बलिहार
1: ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रस